एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you.

की जिद है तो अभी सब कुछ बताता हूँ। मैं कितना खानदानी हूँ, झलक झलक इसकी दिखाता हूँ।

0: Sheffield's Link FM.
1: मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रजत, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी। बस मेरे प्यार की खातिर एक बार वापस आ जाओ रचित, सिर्फ एक बार।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफ एम 96.7 FM.

0: Asian style pizzas to your table at your home.
1: Na yaar, takeaway mein peri peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
0: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betab, wo hai nayab, wo hai nayab. Phone us now on Sheffield 31580 or visit nayabsonline.co.uk.
2: एक्सीडेंट हो गया रपा
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदो नवाले इलाकियां विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 0330571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Sheffield's very own community radio station,
5: Link FM.
6: My name is Shireen.
7: My name is Abed Rahman.
8: My name is Saeed Mudassir.
9: This is Rahan.
10: My name is Rizwan Ishwak.
11: My name is Asham.
12: My name is Azan Mudassir.
13: This is Ariba and you are listening to Link FM.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
5: Link FM.
4: Community radio for Sheffield.
14: This is Link

0: हां जी अज ते कल्ले कल्ले चावा चल रही
1: है भाई परदेसी उंज बड़ा टाइम टाइम करी फिरना आजकल से तू बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा है
0: मैं तो थानों की लगदा तुसी कल्ले चार रोड सब
2: वेलकम बैक खुशामदेद तमाम सुनने वालों को ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हों टेक्स्ट कर रहे हों तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी आप अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कव्वाली की तरफ।

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या द क्लेम टीम.uk पर तलाश करें।

0: have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: ये तुसा की है परेशान खलते हुए जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
2: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
3: ए ए एमओटी प्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.
6: This is Link FM.

0: सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।
1: लिंकिंग कम्युनिटीज, दिस इज लिंक एफएम 96.7 एफएम।

0: If you would like to promote your business on Link.fm, our team can help you. Contact us on 0114-261-8182 or email us on info@linkfm.org.
1: हाथ उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए, मेरा जीना मेरा मरना, ऐ मेरे रब तेरे लिए।

कैसे हो सकता है तुझ पे मुनहरिफ इफ्ता, कैसे हो सकता है तुझसे मुनहरिफ इफ्ता भी। वक्त मैंने कर दिया है खुद को जब तेरे लिए।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
16: Link FM.
17: Ye kis shahanshah hai?

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, द वॉइस ऑफ द कम्युनिटीज, 96.7 लिंक एफएम,
2: लिंक एफएम.
3: From the heart of the city, this is Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन कियानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: my channel. Like, comment and share the video.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: And the winner is...
14: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: are listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main Hanaim Azarvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ये तो सकी है परेशान खलते हुए जी
7: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कोई कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.

0: Sheffield's Link FM.
1: Community ki awaaz.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: You are listening to Link FM 96.7.
11: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
12: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
13: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
14: And the winner is
15: Your business being heard on the radio.
16: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
0: Sheffield's very own community radio station,
17: Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
7: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishwak.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: Fais du mal, s'il te plaît, il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड
3: शेफील्ड लिंक एफएम।

0: on 96.7 FM, online, on smartphone and tablet. This is Link FM.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक FM।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक FM शेफील्ड।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक FM 96.7। बहुत मजा है सीने।

0: क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

ये दिल जो तेरे नाम से धड़के, वो कोई खता नहीं इबादत है। जो तू दिल में ही बसा रहे तो यही मेरी जन्नत है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard.

बिल्कुल खता है, बिल्कुल खता है भाई। चेक कराओ पहले, टेस्ट करो, बंदा ठीक है कि दो नंबर तो नहीं है। बंदा दो नंबर हो तो फिर खता है ना यार। अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ, वेरी वार्म वेलकम।

बिल्कुल जी बिल्कुल, गरीब होना भी कोई ख़ता नहीं होती। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर अगला बंदा ये सोच रहा हो कि आप गरीब बहुत हैं, तो पता क्या होता है, अल्लाह आपको इतना नवाज़ देता है, इतना नवाज़ देता है, इतना नवाज़ देता है कि आप उस बंदे का भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और उससे भी आगे निकल जाते हैं फाइनेंशियली। तो पैसा जो होता है ना, पैसा हाथ की मैल है, यकीन करें। अगर आप हार्ड वर्क करें, वर्क हार्ड करेंगे, आज पैसा नहीं है तो कल आ जाएगा। पैसे की

मैं कहां ऑनलाइन हूं, आप नजर नहीं आ रहे। यार ये कौन लोग हो भाई, कौन लोग हो तुसी भाई? मैंने कब कहा कि मैं ऑनलाइन नजर आऊंगा यार? और मुझे पता है कि मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता, और मैं इसीलिए अपना बूथा दिखाता भी नहीं हूं किसी को। खाली अगर कोई ही यहाँ पर आ जाए, स्टूडियो में आ जाए, या कभी कभार पीएमसी में कोई इवेंट हो रहा हो तो वहाँ पर आपको मेरी शक्ल देखने को मिल जाती है। वरना बात यह है कि अपने वादे के और अपनी बातों के पक्के हैं। जब कहा ना कि ऐसे गायब होंगे कि नज़र नहीं आएंगे, तो इसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे नज़र नहीं आते। अब मैं क्या करूँ, आवाज़ का प्रॉब्लम ज़रूर है कि आवाज़ सुननी पड़ती है, लेकिन सुनने वाले भी कुछ, सुनने वाले सारे नहीं। कोई होता ना दिलों

में पत्थर भरे हों तो आवाज सुनने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझ रहे हैं आप। बात तब हो कि बात हो एहसास की, और जब हो एहसास नाम की कोई शय नहीं, जब हो बात सिर्फ ये कि मुझे किस वक्त कब की किसकी कैसे क्यों के जरूरत हो, तो ऐसे बंदों को और बंदियों को कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई। कोशिश करें आज वैसे ही मेरे जहन में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे एक बहुत अच्छे कज़न हैं, उनसे फ़ोन पे बात होती है, बड़ी खुल के बात होती है, बड़ी खुल खुल के हम बातें करते हैं, सारी स्टोरियों से मेरी वाकिफ है। मैं ऐसे उनसे बात कर रहा था और ऐसे ही सोचा था, मैंने कहा आज मैं आपसे भी ये बात शेयर करूं। यकीन करें आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तसव्वुर करेंगे अगेन अगर आपके दिल के अंदर एहसास हो। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिनके दिल में एहसास है तो आपको इस बात पर बड़ी खुशी होगी कि व्हेन यू आर देयर फॉर समवन व्हेन दे हैड नो वन, व्हेन यू आर देयर फॉर समवन, जब उनको वो लोग मुंह नहीं लगाते थे जिन लोगों के लिए उन्होंने पूरी दुनिया निछावर कर दी, व्हेन यू आर देयर फॉर दोज, अगर वो कोई गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, कोई हारी, कोई बीमारी, कोई मौत, कोई मर्ग, और आपने कहा यार आज इनके पास कोई नहीं, इनके साथ कोई नहीं, तो मैं खड़ा हूंगा, then you should consider yourself lucky. And alhamdulillah, I consider myself lucky. क्योंकि चढ़ते हुए सूरज की मैं पूजा नहीं करता। कोई बंदा चमक रहा हो ना तो उसके साथ खड़ा होके चलूं। अगर कोई बंदा टूट रहा हो ना या टूट चुका हो, उसके साथ खड़ा होना मजबूती है, उसके साथ खड़ा होना गैरतमंदी है, उसके साथ खड़ा होना मोहब्बत है। जब आपके पास सब कुछ है, इज्जत है, एहतराम है, दौलत है, मुकाम है, रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं, लेकिन आप उन सब को चीज साइड पे करके एक ऐसे शख्स के लिए खड़े होते हैं कि आप कहते हैं कि यार बंदा बहुत अकेला है। देन इस चीज को यकीन करें यार, आपको जिंदगी में बहुत सुकून देगी। लेकिन अगर आप हर वक्त सिर्फ उस शख्स के साथ खड़े होते हैं जो चढ़ता सूरज है, जब वो चमक रहा है तो आप उसके साथ खड़े हैं, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, जब सारी दुनिया उसके साथ है आप भी उसके साथ है, तो फिर आपने क्या किया यार। तो मुझे इस चीज पर और मुझे अपने वालदैन की तरबियत के ऊपर इस बात पे ज़रूर फ़ख्र महसूस होता है कि उन्होंने मुझे ऐसी तरबियत ज़रूर की। कहीं जो कमी बेशी है वो मेरी अपनी है, जो कमी बेशी है वो मुझ में, वो मेरी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन मुझे किसी ने भी, अगर किसी ने अपने कमज़ोर मौके पर, कमज़ोर वक्त में पुकारा और उनके अतराफ में कोई बंदा नहीं था, ना उनके दोस्त थे, ना उनकी फैमिली थी और वो अकेले थे, और अगर उन्होंने मुझे पुकारा होगा या पुकारा, तो आई विल ऑलवेज बी देयर। कोई भी हो, वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, लोगों की खुशियों में शानियाना बजाना, तालियां बजाना बहुत आसान होता है। दिल मजबूत होना पड़ता है कि जब आप किसी के साथ उसके मुश्किल वक्त में खड़े हो। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे जो मैंने कहा उस पर बोलने, अमल करने की आगे भी तौफीक अता फरमाए, और आपको भी।

Keep sending your WhatsApp messages on 0793984939. Zainab ne bhi hame join kar liya, keh rahi hai salam bhai, I hope you are well. Alhamdulillah, I'm good. And I don't want you to just listen, I want you to participate also. Some people are messaging me and saying, ji, we are listening. चलो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। पूरे शहर में कितने लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं मेरे भाई। कल भी हमारे एक दोस्त हैं, वो मिसालें दे रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए पहला पढ़ा करो। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज करने में भी लोग बड़ा टाइम लगाते हैं भाई, बिजी लोग हैं, इनके को टाइम नहीं है भाई। शाहिद शब्बीर चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे भाई छोटे, ठीक हो? अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। कहाँ पे सुन रहे हो मेरे भाई? केटू पे नहीं चढ़े हुए? केटू पे, केटू से सुन रहे होगे, क्योंकि ये मेरा भाई छोटा हर वक्त पहाड़ों पर होता है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। वाह, यानी भाई को बुलाना चाहिए, मैं हूँ सेलिब्रिटी भाई। अली हैदर भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं सलाम जनाब। वालेकुम सलाम, अली भाई को आज मौका मिला है और उन्होंने मैसेज किया है, वरना वो आमतौर पर थम्स अप करते हैं। गुड गुड गुड गुड टू हैव यू ऑन ड्राइव टाइम शो, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस। मजा तभी आता है कि ये कम्युनिकेशन टू वे हो भाई। और साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे जी, आज मेन्यू क्या है जी, आज आपने रोटी छोटी खा ली है या खानी है, और अगर खा ली है तो क्या है मेन्यू में यार, दसो मेन्यू, दसो। मेरे से तो मेन्यू पूछो नहीं, क्योंकि मैं सुबह से काम पे था जैनब, अभी तक मैंने कुछ, ओए होए होए, गुड वन गुड वन, आई लाइक कीमा मटर, चलेगा चलेगा, अच्छा है, दौड़ेगा। कीमा मटन में मसाला जरूर, गरम मसाला आपने ज़रूर डालना है, और कुछ डालें ना डालें, मेक श्योर मेथी, मेथी ज़रूर डालिएगा। जिस वक्त हर चीज़ तैयार हो जाए, तैयार होने से 5 मिनट पहले थोड़ा सा हल्का सा वो दम जिस वक्त लग रहा होता है, मेथी डाल लें, मेथी की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, बड़ा मज़े का बनेगा। मज़ा ना आया तो पैसे वापस।

ये शशके भी आप कर लें, शशके भी बना लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाद जंजुआ एंड दिस इज अ ड्राइव टाइम शो, ड्राइव टाइम मंडे टिल थर्सडे ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लिंक एफएम, लिंकिंग कम्युनिटीज, थिंकिंग पॉजिटिव। बच्चों के तो शशके पशके ही चलते रहते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है।

0: I can't remember when was the last time I had phulka. Yeah, maine phulka. Loves phulka. कितने लोगों को पता है ये लव्ज फुलका का क्या मतलब होता है जी? ये फुलका कौन सी जुबान का लव्ज है? जीती रहो मेरी बहन, जीती रहो। ये सारी तालीम के बाद क्या क्या करना पड़ता है ना, फुलके पे फुलका, वो जो होती है ना, जो समझती हैं कि भाई टेकवे हो जाएगा सर। अच्छा रोटी, रोटी। अच्छा भजन, एक बात मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं, एक बुरा ना मनाइएगा, रोटी होती है रोटी, रोटी रोटी पंजाबी में होती है, पाकिस्तान होता है लफ्ज, पाकिस्तान नहीं होता। आपने सुना होगा लोग कितने जा रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं भाई, पाकिस्तान यार। इंग्लिश में बोलो तब भी पाकिस्तान, उर्दू में बोलो तब भी पाकिस्तान। राइट और रॉन्ग ये हर दूसरे बंदे की मुझे चेंज करनी पड़ती है। किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो? पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो यार पंजाबी में भी पाकिस्तान नहीं होता यार, पोटोहारी कश्मीरी जुबान में भी पाकिस्तान नहीं होता। अच्छा जी, ये सवाल किया जा रहा है अगर आप फुलका नहीं खाते तो फिर क्या खाते? गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी खाली इन्वेस्टिगेशन करते रहना सारे, मेरे बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हो, अपने बारे में कुछ बताना नहीं। मेरे बारे में आप ज़्यादा ना सोचा करें, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, और जिनके दिलों में आता हूँ ना वो भी बड़ी तेज़ी से दिल से निकाल देते हैं। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उनके दिलों में जगह बड़ी होती है, वो कभी एक को एंटर करते हैं किसी दूसरे को निकाल देते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं।
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: लो जी सुनो जी, आई गए खान कैटरिंग आले। खान कैटरिंग राधरम, जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब ही नहीं, एक बारी अजमाई के तको। शादी ब्याह, सालगिरह, माणिया, मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्तै इस महंगाई ने दौर विच सस्ता ते मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो। एक और भी गल बुझो, खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने। आर्डर निका होवे या बड़ा, ऑलवेज वेलकम। खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
9: या 07784850934।
10: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related
5: Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

जी ख्वाब हमेशा प्यारे होते हैं यार, ख्वाब देखने के पैसे नहीं लगते यार, देख लो यार देख लो। लेकिन अगर किसी को ख्वाब दिखाओ तो पहले तो ख्वाब दिखाओ नहीं, और अगर ख्वाब दिखाओ तो ख्वाब तोड़ो नहीं। धोखा देने वालों की नशिस्त में आप खड़े ना हो, सफ में खड़े ना हो, धोखा खाने वालों की सफ में खड़े हो। कोई बात नहीं, अगर कोई धोखा दे दे जिंदगी में, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई गल नहीं। याद है सब, मुझे याद है। और ये भी कि याद रखें, जैसे याद है मुझे सब, क्योंकि आप सोचें जरा, आप पढ़े लिखे होंगे या ना ही पढ़े लिखे होंगे, आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसे अपना दोस्त समझते हैं, भाई समझते हैं, बहन समझते हैं, उससे अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, सब कुछ बताते हैं, सोचते हैं कि ये सारी जिंदगी आपके साथ होगा, और वो बंदा आपको इस्तेमाल करता है तब तक जब उसे आपसे फायदा होता है, और उसके बाद किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को, किसी को भी मजबूरी का नाम दे के वो चला जाता है। एक वो शख्स होगा और एक आप होंगे कि आपने धोखा खाया होगा। नाउ जाहिर सी बात है, हमारे रब की निगाह कैसी होती होगी। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ऐसे बंदे को जिसने धोखा खाया होगा, दुख सहा होगा, दर्द सहा होगा, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को देख रहा होगा और उसको भी देख रहा होगा जिसने दिया होगा। तो जिसने खाया उस पे तो मेरा रब करम करेगा सूनर और लेटर, और जिसने दिया उस पर। ये और बात है कि आज के ज़माने में हम ये चीज़ें अगर देखा जाए, मुल्कों के हिसाब से देख लें, बड़े बड़े मुमालिक को देख लें, वो आजकल जहाँ पर जुल्म हो रहा होता है, जुल्म सितम हो रहा होता है, वहाँ पर वो हुकूमतें होती हैं, हुक्मरान होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कईयों की रस्सी को बिल्कुल छोड़ दिया होता है और उन्हें अलाउ कर देते हैं कि वो जो करना चाहें करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर पकड़ होती है, और पकड़ ज़रूर होती है, आप यकीन करें पकड़ होती है। कभी कभार जल्दी हो जाती है, कभी कभार लेट होती है, समटाइम्स इसी दुनिया में हो जाती है और समटाइम्स इस दुनिया में नहीं होती। तो अगर आपने धोखा खाया है ना, देन यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी। और एक मासी ने भी हमें ज्वाइन किया, पढ़ी लिखी मासी, ये वाली मासी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कईयों को शौक होता है मासी बनने का, कईयों को शौक भी होता है मासी बनने का। अगर उनको क्वीन बनाने की कोशिश भी करो तो वो प्रिफर करती हैं कि नहीं, मैं मासी ठीक हूँ, क्योंकि जो मासी का मालिक है वो ज़रा सेट है। ये नहीं सोचते कि बाद में सारे सेट हो जाते हैं, भाई टाइम की बात है। तो ये मासी क्या कह रही है हमारी, बिल्कुल सही कह रही है भाई, बिल्कुल सही कह रही है। पढ़ाओ भी, लिखाओ भी, ट्यूटर भी, ड्राइवर भी, थेरेपिस्ट भी, धोबी भी

अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या करें यार। कई लोगों को मैंने कहा ना मासी, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि मासी का लफ्ज़ हम ख़वातीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कई मर्द भी मासी होते हैं भाई। और मोहसिन भाई ने कुछ लिखा था और उसके बाद डिलीट कर दिया, और मासी के ऊपर कुछ तबसरा करना की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर उन्होंने रोक लिया, अपना हाथ रोक लिया भाई, अपना हाथ रोक लिया। खैर हो, अल्लाह करे। तो गोइंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से प्रोग्राम शुरू किया था, कि अपने आप को आप यू शुड कंसीडर योर सेल्फ लकी, कि अगर आप किसी दूसरे शख्स के हर बुरे वक्त में उनके साथ हों, हर बुरे वक्त में, फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली किसी मुश्किल से गुजर रही है, आप वहाँ मौजूद हैं, उनके आस पड़ोस वाले, उनके क्लोज रिश्तेदार कहीं से गुजर रहे हैं, वो खुद वो शख्स मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो आपने अपनी बिजी लाइफ को छोड़ के अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों अहबाबों को छोड़ के उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हो गए, उस शख्स को तवज्जो दी, उस शख्स के हमदर्द हुए, तो यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी। क्यों? अच्छे वक्त में सब साथ होते हैं, अच्छे वक्त में सब साथ होंगे, आपके पास पैसा हो, दौलत हो, तरक्की हो, कामरानियाँ हो, नाम हो आपका, सब खड़े हो जाएंगे आपके साथ। लेकिन अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तों की पहचान उस वक्त होती है जब बुरे वक्त में आपके साथ कौन हो। हाँ ये ज़रूर है कि आम तौर पर ऐसा होता है, और मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, कि आप लोगों के बुरे वक्त में उनके साथ होंगे। फ़र्ज़ करें उनके घर में कोई हारी होगी, बीमारी होगी, तकलीफ़ होगी, या कोई फौत हो गया होगा, या उनके घरों में खुशियाँ होंगी, शादियाँ, बर्थडेज या कुछ भी, यू आर देयर जस्ट टू मेक अ पॉइंट, आई एम हेयर फॉर यू। लेकिन फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि आपके बुरे वक्त में वो आपके साथ होंगे, क्योंकि वो आम तौर पर नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप हैं या आपका दिल है वैसे ही अगला शख्स भी हो, उसका दिल भी वैसा हो। तो आप सिर्फ अपने दिल की फिक्र करें, और अगर आपने अच्छाई की भी है और उसका सिला अच्छा नहीं मिला, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा रब ऊपर बैठा है ना, वो देख रहा है। अच्छा एक और मुझे मैसेज आया, और बड़ा स्ट्रेंज मैसेज आया, और कुछ हमारी पोइट्री लिंक एफएम के जो पेज है, क्या कहते हैं उसको, टिकटॉक के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पर भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन कुछ पोइट्री वहाँ पे कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, आई रियली अप्रीशिएट। मुझे कई लोगों ने प्राइवेट के भी मैसेजेस किए, और एक हमारे लिसनर है, उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और वो कह रहे हैं कि अगर आप वो पोइट्री जो है आज के प्रोग्राम में शामिल करें, तो मेरे भाई आप वहाँ से जाके सुन लें, लेकिन चलें आपने फरमाइश की है तो वो पोइट्री लगा देंगे थोड़ी देर में, फिर आप मुझे छेड़ दें, क्योंकि फिर आपको पता है कि मैं तो तबसरा भी करूँगा, तो फिर तबसरा जो है वो शायद कईयों को अच्छा ना लगे। एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, इस ट्रैक की फरमाइश भी आई थी, लेकिन पहले से हमने लाइन अप किया हुआ था, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा।

This is Link FM 96.7 FM. Malal nahi. And majal nahi also, yaar. Bilkul yaar. Theek hai bhai. Policy theek hai bhai. एक वक्त में एक बंदा होना चाहिए जिंदगी में यार, किसी दूसरे की मजाल होनी नहीं चाहिए जिंदगी में. सिंपल. ये वाला लगा दिया तो कह रहे दूसरा वाला. भाई दूसरा वाला भी लगेगा यार, सबर करे यार, सबर करे. और मोहसिन भाई ने मैसेज किया है सेंट्रल आइडिया. उन्होंने ये कहा है कि जी अल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीर को जो जालिम है उन लोगों से महफूज फरमाए, आमीन. और साथ में आप करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आपका व्यू है. थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई कि आपने मैसेज किया. और हाँ जी, वो फरमाइश आई है कि जी वो जो पोइट्री है वो लगाएं. वैसे तो आप अगर टिकटॉक पे हमें फॉलो करें तो आई रियली अप्रिशिएट कि मोस्ट ऑफ द पोइट्रीज आर ऑन अवर टिकटॉक लिंक FM 967 एंड मोर पोइट्रीज आर कमिंग अप. एंड इफ यू आर ए पोइट यू कैन सेंड मी योर कलाम इफ यू वांट मी टू रिकॉर्ड कलाम इन माय ओन वॉइस. आई कैन डू दैट. और ये जितनी पोइट्री मैं शामिल करता हूँ, हमें इसकी फरमाइश आती है कि एक दफ़ा लोग मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि ये वाली पोइट्री आप पढ़ के करें. सैयद कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम. और मेरा ताल्लुक उस इदारे से नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सारा गुस्सा लिंक FM पे क्यों उतरता है भाई. मैं इन आहों और बदुआओं और इस लैंग्वेज के टोटल अगेंस्ट हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. यू मे नॉट लाइक इट एंड आई एम रियली सॉरी. हर बंदे को हक हासिल है कि वो अपने प्यार मोहब्बत और इज्जत और एहतराम के दायरे में रह के अपने व्यूज शेयर करे. लेकिन ये आहें और बददुआएं देना शुरू कर देना यार, ये भाई कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई. दिल में आपने जो कहना है कहें. आप रब की बारगाह में हम खड़े होते हैं, नमाज करते हैं, तो उस रब से हम बातें कर सकते हैं, गिले कर सकते हैं. बददुआ फिर भी कोशिश करें कि किसी को ना दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता. समटाइम्स लोगों की बददुआएं वैसे ही लग जाती हैं. अगर आप किसी का दिल दुखा दें तो भी उस दिल की आह लग सकती है. तो आपने जिन लोगों का मेंशन किया है, हो सकता है इतने लोगों की, जाहिर सी बात है गरीबों की और मस्कीन की और कमज़ोर की जो आह होती है वो सीधा अर्श को छूती है. लेकिन मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम फिर भी अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें. तो जी ये फरमाइश आई थी इस उसकी कलाम की और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा. लगाते हैं, देखते हैं, शायद लग जाए. खुशी मिलती है क्या जज्बात की तौहीन करके, ये तुम जो छोड़ते रहते हो मैसेज सीन करके. वो पीछे हट गई है इश्क की जानेब बुलाकर, मुसलमा हो गई है खुद मुझे लादीन करके. मुझे हर बार लगता है मुलाकात आखिरी है, उसे मिलता हूँ विरदे सूरह यासीन करके.

0: Beautiful Cherry Heart.
1: खुशी मिलती है क्या जज्बात की तोहीन करके, ये तुम जो छोड़ते रहते हो मैसेज सीन करके, वो पीछे हट गई है इश्क की जानेब बुलाकर, मुसलमा हो गई है खुद मुझे लादीन करके, मुझे हर बार लगता है मुलाकात आखिरी है, उसे मिलता हूँ विरदे सूरह यासीन करके।
0: जी कभी आप किसी से मिलने गए हों और मिलने से पहले आप बहुत जिक्र कर रहे हों, जिक्र कर करके गए हों, यार मैं तो यहाँ पर अब मेरे से सवाल जवाब ना कीजिएगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे ये शेर इसलिए भी बड़ा पसंद है कि समटाइम्स आप होते हैं लोगों से मिलते हैं और उनसे मिलने से पहले कुछ ना कुछ जिक्र कर रहे होते हैं। मैंने किया ये काम, मैंने जिक्र करके मुलाकातें की हैं, क्योंकि हमेशा लगता है ना समटाइम्स, यार ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को, हर मुलाकात को आप गलत एंगल में लेके जाएं भाई, पर वैसे मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ। उमर नजमी का ब्यूटीफुल कलाम था, और ये जो लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है भाई, ये उसने तो जाहिर सी बात है खातून के हिसाब से कहा, लेकिन ये मर्द हजरात भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और आज के ज़माने में जाहिर सी बात है एक वो ज़माना नहीं रहा, मर्द भी हैं ऐसे जो लोग खुद मुसलमान हो के हो जाएं और दूसरे को लादीन कर दें ना, वो मेटाफोरिकली ऑब्वियसली कहा जा रहा है, तो ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, फिर आप जो मर्जी कर लेना। तो वो जो जिस बंदे को आपने लादीन किया होता है, या उसको दीन से दूरी आप कह सकते हैं, लादीन तो कोई भी नहीं होता, तो आपकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उस पर होती है। मैंने मना नहीं किया सैयद कमर भाई, मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म कि यहाँ के हम फेसबुक पे आके और उसके बाद व्हाट्सएप पे आके हर प्रोग्राम में हम पॉलिटिक्स को ले आएँ, हर प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के मसाइल को ले आएँ या कश्मीर के मसाइल को ले आएँ, हर प्रोग्राम डिफरेंट होता है, अब उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप इस्लाह मेरी करें, कि हम सब की ज़िंदगियों में बे इंतहा टेंशन मुश्किलात हैं, ठीक है, कुछ घरेलू मसाइल हैं, कुछ लोगों के मुल्क से कनेक्शन की वजह से हैं, कईयों की फैमिलियां जो हैं पाकिस्तान में कश्मीर में फंसी हुई हैं। मैं यहाँ इस वक्त बैठ के कोशिश करता हूँ कि लोग खुश हो के जाएं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैंने यहाँ बैठ के यही बातें सारी हर वक्त ये नहीं मैं कर सकता, क्योंकि अगर आप देखें हम सुबह उठते हैं सोशल मीडिया खोलते हैं तो यही कुछ हम देख रहे होते हैं, हम घर जाते हैं टीवी खोलते हैं यही नेगेटिविटी, यही नेगेटिविटी तो नहीं है लेकिन यही सैड न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। तो शायद अगर कोई बंदा कोशिश कर रहा हो ना एक पॉजिटिव वे में आपका मूड चेंज करने की, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप मेरे साथ मिलके थोड़ी देर के लिए सही, हमारी ज़िंदगियों में बहुत मुश्किल आते हैं, हमारी जिंदगी एवरीबडी इज़ फेसिंग देयर ओन चैलेंजेस, ज़रूरी नहीं होता कि हर हंसने वाला शख्स मुस्कुराने वाला शख्स बहुत खुश हो, जिंदगी की इतनी मारें पड़ती हैं ना सबको, इतनी मारें पड़ती हैं कि वो हर वक्त मुस्कुरा के बात करना शुरू कर देते हैं, हर वक्त हंसी मजाक करके बात करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी से सबक सीखा होता है कि मेरे मुश्किल वक्त में और मेरे खुशी के लम्हात पर मैं खुद ही हूँ। That's the only message I would like to say. This is not a political show. I'm not here to discuss Pakistan or Kashmir here. और ये जो मतलब अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, मेरा ये पर्सनल ज़ाती व्यू पॉइंट है, आपका हक है मुझसे इख्तलाफ करें, आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ दीज वर्ड्स, आपने यूज़ करने हैं गो फॉर इट, अगर मेरी बात कोई बुरी लगे, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज़ नहीं था, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यू नो आवर यंगस्टर्स समटाइम्स आर आल्सो लिसनिंग, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, पीपल डू लिसन ड्राइव टाइम शो एंड स्पेशली यंगस्टर्स आर लिसनिंग, तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार उनकी शाम उनके दो घंटे थोड़े अच्छे गुजर जाएं। अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं, फिर उस ट्रैक के पार बात करेंगे।

0: मजाल, मजाल नहीं है भाई कि कोई और गुस्से दिल में ये कहना चाह रही है मेरा भाई। समझ आ रही है ना मेरे भाई, ये पुराने जमाने का गाना लग रहा है, मेरे जमाने का लग रहा है, जिस वक्त एक वक्त में एक ही बंदा दिल में होता था। आजकल तो मसला ही कोई नहीं ना भाई, आजकल उल्टा इसको गाना रीमिक्स करके चेंज करना पड़ेगा कि मजाल ही नहीं कि एक बंदे को रखा जाए भाई, दो को लाइन में, दो तीन चार को रखना चाहिए। और एक और हमें मैसेज आया और कह रहे हैं कि सलाम जजे भाई, वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाफिंग इंफॉर्मेशन, कीमा मटर एंड मेथी, फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट, मेथी इन कीमा। बहन मेरी, मैं तो मेथी हर चीज में खाना पसंद करता हूँ। You tell very good information and I am very impressed by your knowledge and experience and your ability to do this in such a way that I am sure that you will be very successful in your future and that your success will be a blessing to you. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah ne mujhe bahut success di hai. Is kabil nahi hu main. और अपने साथ में कहा कि प्लीज़ प्ले अ वेरी गुड इंडियन फिल्म सॉन्ग बाय लता और मोहम्मद रफ़ी, थैंक्स काइंड रिगार्ड्स। शायदा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज, आई रियली अप्रिशिएट। तो आज आप जाके ना मटर कीमा बना के उसमें मेथी का ज़रा हल्का सा, मेथी जिस वक्त डालें ना चूल्हा बंद करके, मेथी डालते हैं और उसके साथ बेशक एक चम्मच देसी घी डाल दें। अब ये डिपेंडिंग हो रहा है आपकी सेहत के हिसाब से, कल किसी को ब्लड प्रेशर हो या कोई और बीमारी हो तो भाईजान मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारी दे, जो खाना है खा लो। लेकिन मेथी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा से मुझे मेथी की खुशबू अच्छी लगती है। हाँ, आई एक्सेप्ट दैट कि मेथी कैन नॉट बी इन एवरी डिश। अब आपने चिकन कढ़ाई बनाई हो और उसमें मेथी डाल के, या आप पाकिस्तान जाना चाह रही हो, पाकिस्तान नहीं जाना आपने, पाकिस्तान जाना है, प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत सीरियस लेता हूँ और मेरे सीरियस लेने पर मुझे यकीन है मेरे लिसनर्स जो हैं वो भी सीरियस लेंगे और इन चीज़ों को नोट करेंगे, याद करेंगे। और उसके बाद ये भाई, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या हो गया भाई, किसने, अब मैंने क्या कर दिया मेरे भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये लोग खुश हैं कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये ना खुश हैं, मुझे यही समझ नहीं आती यार। ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मेरे घर वाले मुझे ट्रीट करते हैं यार, उनका भी पता नहीं चलता, मैं खैर पता कराने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन आय हाय, ये जुनेद को निहारी याद आ गई। निहारी, वेरी गुड डिश, वेरी गुड फ्राइड अनियन, आई एग्री, नो मेथी ऑन निहारी, यू कैन नॉट पुट मेथी ऑन निहारी, निहारी में फ्राइड अनियन, जिंजर इफ यू लाइक, आई डोंट लाइक जिंजर, कोरिएंडर, ग्रीन चिली एंड लेमन स्क्वीज कर दें और उसके बाद मिक्स करके, आय हाय हाय भूख लग रही है मेरे भाई। काफ़ी अर्सा हो गया भाई निहारी बनाई नहीं, खाई नहीं। और आई एम गोइंग फॉर अ कमर्शियल ब्रेक इन अ फ्यू सेकंड्स, यू गॉट मोर मैसेजेस आल्सो, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस 07939849339।
1: यू आर लिसनिंग टू लिंक एफएम।
2: 55 million face hunger in West and Central Africa including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
4: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Vizier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield or call 0114 308
5: 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330057109 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
8: ये तुसा किए परेशान खलते वे हो जी
9: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
8: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत तला जवाब सर्विस
9: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
10: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
1: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
1: You are listening to Link FM.
0: Gee, welcome back after the commercial break. If you just tune in, this is Link FM 96.7 FM. I'm very thankful to you all for sending me messages on WhatsApp. I appreciate your feedback. خاص طور پر شاہدہ بہن آپ کا بہت شکریہ ویری پازیٹیو میسج آپ نے کیا بھیجا اچھا لگا کہ آپ کو پروگرام کا اسٹائل اچھا ہے پسند کرتی ہیں آپ انجوائے کرتی ہیں اور یہی میرا مقصد ہوتا ہے I've never had مغز اور لیور یو ڈونٹ ہیو مغز اینڈ لیور ایدھر ایک سوچ سوچ گھٹنے کو ہاتھ لگا گھٹنے کو ہاتھ لگا کچھ سوچ سوچ آئی ایم شیور لیور یس آئی ہیڈ لیور مینی ایئرز اگو وین آئی واز ان پاکستان آئی کانٹ ریمبر اباؤٹ مغز آئی ڈونٹ تھنک سو محمود صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور میسج آپ بھی پروگرام سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کسی کا نام مس تو نہیں کر گیا بھائی باجی ماسی کدھر چلی گئی لگتا ہے واشنگ کے بعد مشین بھی لگ گئی ہے और पता नहीं चल रहा मटर मटरों में उसने डालनी थी मेथी और कहीं मटर जल तो नहीं गए भाई। बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है, फुलके बना रही है, फुलके बना रही। हाँ तो मैंने कहा था मैं फुलके नहीं खाता, यानी रोटी मैं खाता हूँ लेकिन रोटी खाता हूँ, फुलका नहीं खाता भाई। हर एक को फुलका बनाना नहीं आता, यकीन करें मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ भाई। एंड रोटी के हिसाब से आई लव तंदूरी रोटी, आई लव तंदूरी रोटी ऑन तवा। डू यू गाइज नो हाउ टू कुक तंदूरी रोटी ऑन तवा? फ्री में टिप्स दे रहा हूं मैं, कितनी है? डू यू नो जुनेद? मरियम मेड करी, पालक वाली करी, कौन सी वाली भाई, पकोड़ों वाली के बगैर पकोड़ों वाली? जल्दी ले आ मेरा भाई फिर तो पकोड़ा योगर्ट थिंग। यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड ये जो पकोड़ा करी है भाई, मैं उसके बीच में पकोड़े जो है ना, वैसे आई डोंट लाइक इट बट मैं इतने शौक से ये वाली कड़ी नहीं खाता। मैं दूसरी देसी कड़ी है वो खा लेता हूँ बगैर पकोड़ों के, लेकिन अगर पकोड़ों वाली हो तो फिर मुझे पकोड़े सेपरेट चाहिए, क्योंकि आई नीड क्रिस्पी पकोड़े। कड़ी के बीच में अंदर जाने से वो पकोड़े ठुस ठुस हो जाते हैं, तो मुझे ठुस ठुस पकोड़े पसंद नहीं है भाई। तो मोहसिन भाई क्या खा लिया यार, क्या खा लिया, यहाँ दो घंटे बैठ के सिर्फ खाने की बात करके पेट भर लिया, इस पे भी आप नेगेटिव हो रहे हैं? क्यों मेरे भाई, क्यों इतने उदास हो रहे हो यार? मुझे तो मौका ही नहीं मिला खाने का भाई। आपको पता है यहाँ पर जितने जो लीडर होते हैं खासतौर पर पाकिस्तान वगैरह में, जब उन्हें मौका मिलता है तो वो खा भी लेते हैं, हमें तो मिला भी नहीं, और इंशाल्लाह अल्लाह करे मिले।

जी उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्लासिक ट्रैक एंजॉय किया होगा, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक, माय ऑल टाइम फेवरेट। मोहसिन भाई और महमूद साहब आपने एंजॉय किया है, मुझे नहीं पता कि शायदा जी आपको ये ट्रैक अच्छा लगा कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। बाकी कीमा मटर आलू निहारी हलीम बिरयानी सब गायब, सब निकल लिए पतली गली से, आए सलाम किया और निकल लिए। कोई गल नहीं, अब निकल लिए, अब हम भी निकलते हैं भाई, आदत हो गई है अब हमें भी आदत हो गई है, अब किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, आदत हो गई है, तो आप भी निकल लियो, हम भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, आई नो दैट वॉज ओरिजिनल ट्रैक, दैट्स वाई जुनेद, साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं भी आ रही हो ना, तब भी कितना एक अच्छी फीलिंग आती है ना। तो एक क्लासिक ट्रैक के बाद time for you to put the volume up. If you are driving, I guarantee you, you will enjoy this track.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
2: Link FM.
0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: 96.7 लिंक एफएम, लिंक एफएम,
0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
2: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
3: This is Link FM.
4: You are listening to Link FM.
5: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
6: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
7: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, laziersolicitors.co.uk. Lazier Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
8: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
9: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
10: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 to VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786786 2585।
5: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
11: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm 96.7.
1: 96.7 Link FM.
4: You are listening to Link FM.

Link FM Sheffield. Link FM. हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ Link FM Sheffield. हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ Link FM.

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM. Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है फुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहां कुछ नहीं वहां से अब गर्द उठे। तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त में रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर, फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.